सब ते उजता की सुभा बनी नानक ए गुणनाम सुखमनी। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद पदार खासे दस्खत का पातशाही दसवीं अकाल पुर की रिच्छा हमने सब लोह दी रिच्छा हमने सर्वकाल जी दी रिच्छा हमने सर्वलो जी दी सदा रिच्छा हमने बणतन मही जल तल महा जह तह प्रसू प्रणान धान जागमग तेज पूर्ण प्रताप।

जिया अंदर जीव सबकी जान ला सब किस तेरा बस तेरा घर पल तेरा घर आनंद बधाई तू तो घर मान मता तेजे अपने आप जर सर्व कला भरपूर दी सिजत करता नानक दास अंदाज तुद आ गए बिनवत्ता स्लोक पौन गुरु पाणी पिता माता धरत मात दिवस रात दुए दाई दाया के लसन जगत।

चक्र चहन अर बरन जात अर पात नहन जेह रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत के अचल मूरत अनभव प्रकाश अमितोज कही जय।

0: राज करेगा खालसा की रहना कोई पार हुए समझेंगे बच्चे शरण को होए
1: उड़गी स्वामने की कर कूड़ा पासार लंका बाजे भले काने लंका अवतार चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्रभुते स्वयंभू स्वयं सदा सदभुते दुकाल प्रणाम से दया रंग स्वरूपे सदाय वसंदे अपंगम भुते देखते गोपते न सर पे दरिया पर अनान गुरु गोविंद सिंह का काल पूर्ति सार दरबार में तो दरबार आश्रम के दरबार लक्ष्मी कृत्रिम दरबार आश्रम देख देख नमस्कार अनुरा नान गुरु गोविंद सिंह।

प्रसाद कवित। हुक मलहारी का जगत हा, विभूत धारी की दुआ मसान वास करियो करत है। घुघु मठ वासी लगे डोलत, उदासी मृग तरवर सदी मोन सादे ही मरत है। बिंद के सदैया ताहे हिंज की बटैया, देद बंदरा सदी उपाय नांगे ही फिरत है। अंगना अधीन काम क्रोध मैं पर बीन, एक ज्ञान के बिहीन छीन का सिक तरत है। भूत बन चारी छित छोना सब, दुदादारी पवन के हारी सो भुजंग जानियत है। तृण के भचया धन लोभ के तजैया, ते तो गौवन के जैया मृग भैया मानियत है। नाभ के उडैया ताय पंछी की बडैया, दे दबा गुलाब रुड़ाल ब्रिक ध्यानी ठानियत है। जेते बड़े ज्ञानी तीनो जानी, पब खानी नाहे ऐसे ना प्रपंच मन भूल आनियत है। भूमि के बसया ताय भूजरी की जैया, कह नाभ के उडैया सुचरया कह बखानिया। फूल के बचया ताय बांदर की जैया, कह आदि से फिर या ते तो बोध कह बछानिया। जल के तरह या को गंगेरी सिकात, जग आग के बचया सुचकोर सम्मानिया। सूरज सिवैया ताय काल की बढ़ाई, दे चंद्रमा सिवैया कौ कवि कह पहचानिया। नारायण कच्छ मा तिंदुआ कात, सब काल नाव काल जय ताल में रहत है। गोपीनाथ गुजर गोपास, वह तीन चारी रिखी किस नाम के महंत लहियत है। माधव पवर आओ टेरु को कन्हैया नाम, कंस को बधैया जम दूत कहियत है। मूड़े रूड़ पीटत न गुड़, तागो भेद पाव पूजत न ताहे जाके राके रहियत है। विश्वपाल जगत का दीन दयाल, बैरी साल सदा प्रतपाल जम जाल दे रहते हैं। जोगी जटाधारी सती सच बड़े ब्रह्मचारी, त्यान काज भूख प्यास देह पसहत हैं। निवली करम जल होम पावक, पवन होम आदमुख एक पाए ठांडे न बहत हैं। मानव फनिंद देव दानो न पाव, भेद वेद औकतेब नेत नेत के कहते हैं। नाचत फिरत मोर बादर करत, कोर दामनी अनेक भाव करियो करत है। चंद्रमा ते शीतल ना सूरज ते तपते, इंद्र सोना राजा भाव भूम को भरत है। शिव से तपस्वी याद वर्मा से न बेचारी, सनत कुमार सीतप्य सनानत है। ज्ञान के भीन काल फांस के अधीन, सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है। एक शिव भये एक गए एक फेर भये, राम चंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। ब्रह्मार विषण के ते वेद औ पुराण के ते सिमृत समूहन के होय होय बिताए हैं। मोन दी मदार के ते असुनी कुमार के ते अंसा अवतार के ते काल बस भई है। पीर औ पिकाम्बर के ते गणिना परते, ते भूमि ते होय का फेर भूम ही मिलाए हैं। जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी, छत्रे की छाया कई कोस लो छलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फेरत देश, बड़े बड़े राजन के द्रव को दलत हैं। मान से मही पौ दिलीप का से छत्रधारी, बड़ो अभिमान भुज दंड को करत हैं। दारा से दिलीसर दुर्योधन से मानदारी, भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत हैं। सिज दे करे अनेक तोपची कपट भेज, पोज दी अनेक दाने वावत है शीस का। कहाँ पयो माल्य जप काटत अनेक डन, सौतो न डंडा अष्टांग अथ तीस को। कहाँ पयो रोगी जप डार रहो, उर्दमुख मन तिन मूड निहुरायो आज ईस को। कामना दिन सदा साम न प्रवीण, एक पाव न बिहन कस पावे जगदीश को। शीश पट कत जाके कान में खजूरा तस, मुंड पट छट कत मित्र पुत्र

भेड़ जो घसत सिज वृक्षन स माटी को बछैया बोल पूछ लीज जोग स काम न अधीन काम क्रोध मैं परवीन एक भाव न विहीन कस भेट पर लोग स नाचोई करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करी हुई करत है एक पॉइंट हाटे सदा बन मह।

दिन कस के तरत है। जैसे एक स्वांगी कहू जो किया बैरागी बने कहूं संन्यास भेष बन के दिखावई, कहूं पौन आहारी कहूं बैठ लाए तारी, कहूं लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई, कहूं ब्रह्मचारी कहूं हाथ पे लगावे।

दीन कैसे ज्ञान को विचार ही ताप के सहित जो पाइये अताप ना ताप ना अनेक तन कायल सहत है जाप के किए ते जो पे पाइयत अजाप दे पूत

जाते हैं। को पयो मुंडिया सन्यासी को जोगी पयो को ब्रह्मचारी को जति अनमानवो हिंदू तुरक को राव जी मांसाफी मानस की जास भय के पहचान वो करता करीम सोई राजक रहीम ओई दूसरों पेत कोई भूल ब्रह्मान वो एक ही की सेव सब ही को गुरुदेव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान वो देव राम सी सोई पूजाओ निवाज ओई मानस भय एक पर अनेक प्रमाव है देवता देव जज गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे नारे देशन को पेश को प्रमाव है इके नैन इके कान इके धय इके

जैसे एक आग ते कनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे हो कह फिर आग में मिलाएंगे, जैसे एक दूर ते अनेक दूर पूरत है दूर के कनु का फिर दूर ही समाएंगे, जैसे एक नाते तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहेंगे, तैसे भी स्वरूप ते अभूत प्रकट होए ताए ते ऊपर सब ताए में समाएंगे, केते कच्छ मच्छ केते उनको करत भच केते अच्छ वच्छ हो सपच उड़ जाएंगे, केते नव बीच अच्छ पच को करेंगे भच्छ, केतक प्रत्यत होए

काल ही चबाहेंगे। तेज ज्यो अतेज मैं अतेज जिस तेज लेन ताहे ते पसबताहे में समाएंगे। कुकत फिरत किते रोवत मरत किते जाल में डुबत किते आग में जरत हैं। केते गंगवासी केते मदीना मक्का निवासी केतक उदासी के प्रमाई फिरत हैं। करवत साध केते भूम में गड़त केते सुआ पे चढ़त केते दुखा परत हैं। ज्ञान में उड़त केते जल में रत केते ज्ञान के बिन जक जारे ही मरत हैं। शोध हारे देवता विरोध हारे दानु बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी कस हारे चंदन लगाए हारे चुआ चार पूज हारे।

न रेखं न मोहं न क्रोहं न द्रोहं न द्वेखं न कर्मं न भर्मं न जन्मं न जातं न मित्रं न सत्रं न पितरं न मातं न नेहं न गेहं न कामं न धामं न पुत्रं न मित्रं न सत्रं न भामं अलेखं अभेखं अजुनि स्वरूपं सदा सिद्ध दा बुद्ध दा वृद्ध रूपं न ही जान जाई का

प्रज्ञा प्रकाशी अच्छेदं अच्छाया दद्वैविनाशी न जातं न पातं न रूपं न रंगे नमो आद अभंगे नमो आद अभंगे किते कृष्ण से कीट कूट उपाय उसारे गड़े फिर मिटे बनाए अगाध अभय आदद वैविनाशी परे अंग परा परम पूरन प्रकाशी न आदंग न व्यादंग अगाधंग स्वरूपे अखंडत प्रताप आद अच्छा विभूते न जन्मंग न वर्णंग न वर्णंग न व्याधे अखंडे प्रचंडे अदंडे असादे न नेहंग न गेहंग सनेहंग सनाते उदंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाते न जाते न पाते न सत्रे न मित्रे स्वभूते भविके भवाने अचित्रे नारायण नारंगं न रूपं न रेखं न लोभं न चोभं अभूतं अभेकं न सत्र न मित्रं न नेहं न गेहं सदावं सदा सर्व सर्वत्र स्नेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं अजोनि अछायादद्व अजोहं न जन्मं न वर्णं न वर्णं न व्याधं न रोगं न शोकं अभय निर्विखादं अछेदं अभेदं अकर्मं अकालं अखंडं अभंडं प्रचंडं अपालं न तातं न मातं न जायतं न कायं न नेहं न गेहं न भर्मं न भायं न रूपं न भूपं न कायं न कर्मं।

नृयोक्तं प्रभात अनुक्तं प्रतापे अच्युक्तं अच्छायात अविक्ते अथापे विभुक्तं अच्छायात अच्छा स्वरूपे नमो एक रूपे न नेहं न गेहं न शोकं न साकं परेयं पवित्रं पुनीतं अतागं न जातं न पातं न मित्रं न मंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मं न भर्मं न सर्वं न साके न भर्मं न चर्मं न कर्मं न बांके न सत्रं न मित्रं न पुत्रं स्वरूपे नमो आद रूपे कौं कंज के मंज के भरमभूले कौं रंक के राज के धर्मलूले कौं देश के भेष के धर्मता में कौं राज के साज के बाजता में कौं अक्षर के पक्षर के सिद्ध सा दे कौं सिद्ध के बुध के बृदला दे कौं अंग के रंग के संग देखे कौं जंग के रंग पेखे कौं धर्म के परम के हर्म जाने कौं धर्म के परम माने कौं चार चेष्टा कौं चित्र रूपं कौं परम प्रज्ञा कौं सर्व भूपं कौं नेह ग्रहं कौं देह दुखं कौं औखधि रोग के शोक सोखं कौं देव विद्या कौं दात बानी कौं जाच गंधर्व किन्नर कहानी कौं राज सीसाद की तामसी हो कौं जोग विद्या तरे तापसी हो कौं रोग रहता कौं जोग जुगतं कौं भूम की भुगत मैं भर्म भुगतं कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हो कहूँ जच विद्या तरे मानवी हो कहूँ राजसी हो कहूँ राज कन्या कहूँ सृष्ट की पृष्ठ की रिष्ट पुण्या कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम बानी कहूँ कोक की काव कथा कहानी कहूँ अद्र सारंग कहूँ भद्र रूपं कहूँ मद्र बानी कहूँ क्षुद्र स्वरूपं कहूँ वेद विद्या कहूँ काव रूपं कहूँ चेष्टाचार चित्रं स्वरूपं कहूँ परम पुराण को पार पावे कहूँ बैठ कुरान के गीत गावे कहूँ सिद्ध शेखं कहूँ ब्रह्म धर्मं कहूँ वृद्ध अवस्था कहूँ बाल कर्मं कहूँ ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूँ नेह देहं कहूँ त्याग गृहं कहूँ जोग भोगं कहूँ रोग रागं कहूँ रोग हर्ता कहूँ भोग त्यागं कहूँ राज रितं कहूँ

कहूं पहलवी पस्तवी संस्कृति हो, कहूं देश पाखिया कहूं देवबानी, कहूं राज विद्या कहूं राजतानी, कहूं मंत्र विद्या कहूं तंत्र सारंग, कहूं जंत्र जितं कहूं शस्त्र तारंग, कहूं होम पूजा कहूं देव अर्चा, कहूं पिंगुला चारणी गीत चर्चा, कहूं बिन विद्या कहूं गान गीतं, कहूं मलेच पाख्या कहूं वेद रितं, कहूं नृत्य विद्या कहूं नाग बानी, कहूं गारुड़ गूढ़ कथा कहानी।

नमो नाथ पूरे सदा सिद्ध दाता अछेदी अक्षय आदत वैविदाता नात्रस्तं नाग्रस्तं समस्तं स्वरूपे नमस्तं नमस्तं तुअस्तं अभूते तव प्रसाद पादड़ी छांदे अभ्यक्त तेज अनुभव प्रकाश अच्छा स्वरूप अद्वै अनाथ अनटुट तेज अनखट भंडार दाता दुरंग सर्वंग प्रकाश अनुभूत तेज अनचेज गात करता सदी हरतासनाथ आसन अडोल अनुभूत कर्म दाता दयालंभूत धर्म जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जय जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मां जय कर्म परम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गे नहीं ब्योत बा जय जात पार नहीं शत्रु मित्र जय नेह गे नहीं चहन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रे जय जन्म जात नहीं भरम भी जय कर्म परम नहीं जात पानु ने गे नहीं पितृ माँ जय नाम था।

भुगते जे काल बियाल कट्यो नांग अच्छा सर्वख अवंगे जे नित नित उचरंत बेज अलख रूप कथत कति जे अलख रूप आसन डोज अमित अच्छा अतुले जे त्यान काज मुन जन अनंत कई कल्प एक स्वादंत दुरंते तन सीत गाम भरखा संत कई कल्प एक आसन बितंते कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तदप पावत न पार कोई उर्दमा दे संवरण कई उर्दमा पाव जुलंत कई सिमर शास्त्र उच्चरण वेद कई को काप कथत कति कई अग्नहोत्र कई पवन आहार कई करत कोट मृत्यु को आहारे कई करत साक पै पत्र भच नहीं तदव दे होवत प्रतच्छ कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रति कहूँ वेद रीत जज्ञात कर्म कहूँ अग्नहोत्र

करत ब्रह्म विद्या बिचा कहु जोग रेत कहु बिरद चा कहु करत जच गंधर भगान कहु धूप दीप कहु अर्घ दान कहु पितर कर्म कहु वेद रीत कहु नृत्य नाच कहु गान गीत कहु करत शास्त्र सिमृत उच्चार कही भजत एक पग निराधार कही ने गे ने गे वार कही ब्रह्मत दे दे सनुदा कही जल निवार कही अगनताप कही जपत उर्द लटकंत जा कही जपत जोग जल कल पंग प्रजंत नहीं तदपतास पायतना अंत कई करत कोड विद्या।

जय जम्पो जुगण जू जुअंग भय कंपो मेर पे अल्पवंग तप ताप सर्व जलेर थलंदन उचरत इंद्र कुमेर बलंग अनखेद स्वरूप अभेद अभ्यंग अनखंड अभुत अच्छेद अक्षंग।

शोक सुखं जय रोग न शोक न भोग भयं जय खेद ना भेद ना छेद छ जय जात न पात न मात पितं जय रच्यं छत्रि छत्र जं जय राग ना रेग ना रोग बणं जय द्वैक ना दाग ना दोग गणं जय अंड ते ब्रह्मंड रचियो दश्चार करि न खंड सचियो रजताम ते अतेज के अनुभव पद आद प्रचंड लियो श्रिय सेंद रोस बिंद न गिंद न गं श्रिय जच्छ गंधर्वे फणिंद भुजं रच दे अदेव अभेव नरंग नरपाल कृपाले कराल त्रिगं नरपाले नरपाल कराल त्रिगं कई कीट पतंग भुजंग नरंग रच अंडज सेत दूत भुजंग किय देव अदेव सराद पितंग अनखंड प्रताप प्रचंड कतंग प्रभ जातन मातन ज्योत दुतंग जय तातन मातन भ्रासुतंग जय रोग न शोक न भोग भुवंग जय जंप किन्नर जच भुजंग नर नार निपुंसक जाय किए गण किन्नर जच भुजंग दिए गज बाजर ताधिक पांद गणंग बाबूत भविक भवान तुमंग जय अंडज सेतज जेर रजंग रज भूम आकाश पताल जलंग रज

जय पाव पवन प्रचंड मई जय खंड अखंड प्रचंड किए जय छत्र छपाए दिए जय लोक चतुर्दचार रचे नर गंधर्व देव दे सच्चे अनुदूत अभूत छूत मत अनगाद अभ्याद अनाद कतंग अनखेद अभेद छेद नरंग जय चार चतुर्द चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेख रुगंग जय सोग न भोग न भोग जुवंग भो भंजन गंजन आद सरंग जय बंदत देव अदे नरंग गण किन्नर जाज भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभा अन गंज भृतंग जय पार न पावा पूर्व मत अन खंड।

पुनीत है पुराण है, अगंज है, अबंज है, करीम है, कुरान है, अकाल है, पाल है, ख्याल है, खंड है, न रोग है, न शोक है, न भेद है, न भंड है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न प्रिया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमात है, न शीत है, न सोच है, न घ्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दत्त है, न नर को स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, ना छिद्र की विभूत है, ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना

तहना चित्र चयन वर्ण है। बेअंत है अनंत है अनंत तेज मानिया पूजा बिजह सदा चित तेज मानिया है। ना आध है ना अभ्याध है अगाध रूप लेखिया दोख है दाघ है छपता पीखिया।

सर्व गागा हट्टे गंदर पे गवाय किन्नर दरबे पड़ पड़ थके माँ कब गड़त गाड़ अनंते हर हर कहे ओ सबू मिल नाम नाम दुरंते भेद भेद ना पायो।

राग रूप ना रंग सर्व लायक सर्व का सर्व ते अनुभंगे सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व को प्रपाल दीन बंद दयाल स्वामी आद देव पाल दीन बंद प्रवीण श्रीपा सर्व को करता।

सर्वकर्ता सर्वहर्ता सर्व के अनकाम है, सर्व खंड सर्व दंड सर्व के निजभाम है, सर्व भुक्ता सर्व जुक्ता सर्व कारण प्रवीण, सर्व खंड सर्व दंड सर्व तर्म अधीन।

जय जय हो सीमा खासर मर्दन रामक बर्दन दाद जनंग चंडासुर चंडन मुन विमुंडन खंड खंडन खून खिते दावनी दमंगण भुजा फरंगण फणी फुंकारण ज्योति जिते सरबार विवेखन दुष्ट पर करखण पुष्ट परारखण दुष्ट मते जय जय हो सीमा खासर मर्दन भूमकास तल उर्द दे दानी प्रासन सुछाब निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गुड़गते रक्तासुर आचन ज्योत प्रवाचन निधन रांचन धर्म भ्रते सुरणत अचिंती अनल विवंती जोग जयंती खड़क धरे जय जय हो सीमा खासर मर्दन पाप विनाशन धर्म करे अगोक निवारण दुष् प्रचारण सृष्ट उपारण सोधमते फणियर फुंकारण बाघ प्रकारण सर्व प्रहारण साधमते सैति स्नान अष्ट प्रभा

चार चमकारं छछुरारं धूम दुकानं द्रवमते दाढ़ी प्रदंते जोग जयंते मनुज मथंते गुरु कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूरज प्रत्येजन अष्टभुते।

किंकणी प्रसोहन सुरनर मोहन सिंगारोहण बिदलतले जय जय हो सी सब ठौर निवासने बाय पताले आकाश अनले संकट निवार अदम उदार तेज प्रखरगण तंद तपे दुख दोख दयंती ज्वाल जयंती आद अनाद अगाध अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रताप।

चंचला चकंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तच सरे करकसा कुठारे नरक निवारे अधम उदारे तुर बुजे दानी दमंके के अलंके आद अतंके कुरु कथे जय जय हो श्री रक्तासुर खंडन सुम चक्रत निसुम मथे बारज विलोचन प्रथम विमोचन सोच विशोचन कौच कसे दानी प्रासे सुरसरना से सुवृत सुभाष्य दृष्ट कसे चंचला चकंगी वेद प्रसंगी तेज तुरंगी खंड सुरंग जय जय हो सिंह खासुर मर्दन आद नाद का दुर्दन घंटा बराज रुड़जन बाज ब्रह्म बाज सुनत सुरंग कोकिल सुन लाज के लोक बाज सुख उपराज मधुरंग दुर्दन दल दक्ष मंदन रिच्छ सब न भज रोहरण जय जय हो सिम खास मर्दन चंड चक्र तन आद गुरंग चाचिर प्रचोदन दुष्ट प्रोदन रोज अरोदन कुरुते धुमराज विदुंसन प्रला प्रदुंसन जाग विदुंसन सुध मते जालपा जयंती शत्रु मतंती दुष्ट प्रधान गाड़ गते जय जय हो सिम खासुर मर्दन आदि जुगादे अगाध गते खत्रयान खतंगी अभय अभंगी आदरंगी अगाध गते प्रहलाद बिहंडन चिच्छुर दंडन तेज प्रचंडन

गंजन कुमाने अतुल प्रवाने संत माने आदंते जय जय उसी में खसर मर्दने साधे प्रदर्शन दुष्टंते कारण करेली गर्भ कैली जोत तिले त्वंद मते अष्टाचमक शत्र चमकण दामिन दमकण आदि प्रते डुगडुगी तमक बाप पवंक भुजा फरंगे सुदगते जय जय हो सीमा खासुर मर्दने आदि जुगाद अनाद मते चित्रासुन मारन रक्निवारन पति धारण

तुम कहो देव सर्वम विचाजम कियो आप करते पसा जद अभूतान भय अनंतो कहो जथाम प्राणतांते कर्ता करिन कादर कृपा अद्व अभूत अन भय दिया दाता दुरन दुख दुख हरत जय नेत नेत सब वेद काते कई ऊंच नीच की नो बना सब वार पार जाको प्रवास सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूड़े क्यों ना सेवंत ताहे कई मूड़ पत्र पूजा

सब रोग शोक ते रात रू अनभय अकाल अच्छा सुरू करुणा निदान कामल कृपा दुख दो हर्त दाता दिया अंजन भीन अनभंजना जल तल प्रवाह सर्वतसा जय जात पाने भेद वर्ण जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय शत्रु मित्र दो एक सार अच्छा सुरू अब चल पार जानी न जय जय रूप रेख जय कास बास कह बास तास कह कौन पे कह नाम तास है कौन जा जय शत्रु मित्र नहीं पुत्र भ्रा करुणा निदान कारण स्वरूप जय चक्र चैन रंग रूप जय खेद वे न कर्म का सब जीव जंत की कर्तपा वर्धंग बृहत सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग।

कई कोट इंद्र जय पानहार कई कोट रुद्र जुगिया दुआर कई वेद प्यास ब्रह्मा अनंत जय नेत नेत निस दिन उच्चरंत तव प्रसाद सोइए दीनन की प्रतपाल करन संत बार गनी मन कारन पाच पशु नक नाग नराज सर्व समय।

दाता दुख दुखन का दुलदुजन के बल में दल डारे खंड अखंड प्रचंड बहारन पूरन प्रेम की प्रीत संभार है पार न पास गए पद्मा पे भेद का तेव अभेद उच्चार है रोज ही राज विलोकन राज गए रोग रुहान की रोजी नटार है कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भविक मोहन बनाए देव दे खप्पे हमें न भेव लखे भ्रम सुवरमाए वेद पुराण कतेव पुराण हसे थक्के कर हाथ न आए पूरन प्रेम प्रभाव बिना पश्यों की श्री पद्मा पद पाए अनंत अगाध अद्वैक्ष भूत भविक भवान वह अंतभीन अनातम आप अदाग

सो पेटई के पट बीज बचावे जज भजंग सो दान दे अभे तुम्हें सभी कर दयावे भूम आकाश पदार साध जज भजंग सब सिन्यावे पास गए नहीं पार प्रवाह को नेति नेत वेद बतावे हो थके सभी खुजिया सुरहार परे हरात न आवे नार से चतुरानंद से रूम नारिक से समूह मिल गायो वेद कदे न भेद लिखो सब।

अत्र के चले अछित छत्र के धरे या छत्र धारियों के चले अमा शत्रुन के साल है दान के देवे अमा मान के बढ़या अवसान के देवे यहाँ कटया जमजाल है जोध के दिदया विरोध के मिटया मा बुध के दिवया मा मानु के मान है ज्ञानु के ज्ञात मा बुध तक दाता देव कानु के काल मा कालहु के काल है पूर्वी न पार पवे हिंगुला हिमालय तावे घोर कर दे जी गुण गावे तेरे नाम है जोगी जोग साधे पौन साधनक तेब बांधे अरब के अरबी अराध तेरे नाम है फरा के फरंगी माने कंधारी कुरे सी जन पश्चिम के पश्चिमी पछाने निज काम है मरहट्टा मंगेले तेरी मन सो तपस्या करे दृढ़ वै तिलंगी पहचान धर्म काम है।

कहते इंद्र द्वार, कहते ब्रह्मा मुख चार, कहते कृष्णा अवतार, कहते राम कई यत है, कहते ससराज, कहते सूरज प्रकाशी, कहते मुंडिया उदासी जोग द्वार दईयत है, कहते महादीन, कहते व्यास प्रवीण, कहते कुमेरे कुलीन, कहते जज कहियत है, करता है विचार पहना पूरन को पार पारता है, देह पार निराधार लईयत।

विरक्तता की मान है के बुद्ध को उदार है, सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है, के रूपों को रूप है, कुमत को प्रहार है, दीनन को दाता है, गनी मन को गारक है, साधन को रक्षक है, गुणन को पहार है, सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विबुध है, के क्रोध को अबुध है, के अक्षय नाशी है, काम को निंदा है, के खूबी को दीनदा है, गनीमन गरिंदा है, के तेज को प्रकाशी है, काल के काल है, के शत्रुन के साल है, के मित्रन को पुकत है, के वृद्धता की बासी है, योग को जंत्र है, के तेज को तंत्र है, के मोहनी को मंत्र है, के पूर्ण प्रकाशी है, रूप को निवास है, के बुद्ध को प्रकाश है, के सिद्धता को वास है, के बुद्ध को कार्य है, देवन को देव है, निरंजन अभी है।

तराशीस के दुरंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गायत है। भकरी कंदारी गोर गखरी कर देता चारी पान के हारी तेरो नाम क्या है। पूरब पलाऊ काम रूप औ कमाऊ।

अच्छा स्वरूप व्यक्त नाता जन भाव सर्वा प्रमा जहत महीब बन तन प्रफुल्ले शोभा बसंत जहत प्रडुल्ले बन तन दुरंत

लक्ष्मी खड़ी तुम्हें दरबारा सर्वे ते कृपणस्कारा धरा नान गुरु गोविंद सिंह की पुनर्वतार जाग मग लोग विराज।

आओ साध संगत जी हुण विलखण रंग विच रंगे जाइए। भाई हरजोत सिंह जख्मी जी ते आपां बड़े प्यार नाल एक बजे तक सारी कीर्तन दी हाजरी सरवण करनी। अदास भी बैठेगा ते संगत ने भी जो वादा किया साडे नाल वो पूरा करना। आपां पूरे कीर्तन का रस माणना ते दूजी मैं बेनती होर जरूरी कर लगा साध संगत जी, असी बहुत सत्कार बहुत प्यार बहुत असीस अति सत्कारयोग सिंह साहब संत बाबा कुलवंत सिंह जी समुची बोर्ड की टीम जिहड़े हर साल ये सेवावां सानू बाबे की याद में मनाने देंदे ने उन्हां सारयां दा बड़ा शुकराना। और बड़े प्यारे कीर्तनी इत्थे पहुँचे हुए ने सारयां दा बहुत शुकराना। आओ संगत नूं बेनती थोड़ा अगे अगे आ जाओ। भाई सुखप्रीत सिंह जी इत्थे अगे अगे आ जाओ। भाई साहब का हुक्म बेनती इन्होंने हुक्म इन्हों की बेनती साढ़े वालों हुक्म गुरु के कीर्तनिए ने। हाँ जी भाई इन्हों तो बाद भाई सिमरप्रीत सिंह जी बड़े प्यारे कीर्तनी, फिर भाई गुरसाहब सिंह सुरमा छोटा रवनूर सिंह जी उन्होंने कल हाजरी है पर वो तैयार हो के अज ही आ गया। पाँच मिनट का उन्होंने शब्द पढ़ना तो तुम्हें आनंद आएगा सारे। बाकी बीबा गुरप्रीत कौर कल की हाजरी के ये कीर्तने होर बड़े बेअंत कीर्तने बीबा जसलीन कौर मोंगा जी ट्रेन मिस हो गई आ गए ने एक भी शब्द कल के दीवान के हाजरी करे। सो आओ बड़े प्यार भाई हरजोत सिंह जख्मी जी तो मैं संगत को बेनती करदा जिन्होंने श्री चौपाई साहब के पाठ कर रहे हैं तो परसों तक उसी परसों आप अरदास करनी है तो परसों तक दास के वट्सएप पर लिखन की कृपालता करनी किन्ने किन्ने पढ़े गए हूँ तो अच्छ सवेर तो शुरू हो जाओ तो सवेरे जरूरी तख्त साहब के उपर ही सचखंड वासी संत बाबा सुच्चा सिंह जी प्यारी याद के जो श्री अखंड पाठ साहब के भो भोग पैने ने उपर पौड़ियाँ चढ़ के बाबा सोहन सिंह जी और समुचे परिवारों की अपनी जी संगत आई है वो उत्थे 7:30 बजे उत्ते पहुँचने की कृपालता करनी। 8:30 तक सारी समाप्ति हो जाती है अरदास हो जाती है फिर जी संगत ने सरदार मैं ग्रुप च पाया हो सरदार कमलजीत सिंह जी सरदार गुरप्रीत सिंह जी लुधियाने वाले उन्होंने वट्सएप करना किन्नी संगत ने बसों के जाना क्योंकि बाद के मुश्किल आदि ने। सो वो आप पूरे 9 बजे इतों नेड़े नेड़े गुरु घर आले पावे माता जी के स्थान पर जावे आप जावे हीरा घाट जावे शिकार घाट जावे दर्शन करा माल टेकरी साहब। सो सारी संगत को बेनती है कि प्रवान करनी आओ साज सुर हो गए ने कीर्तन सुने अद्धे घंटे लिए भाई हरजोत सिंह जख्मी जी आप जी दर्शन करने।

जियो। बेनती है दो तरह गुरमत कीर्तन गुरमुख कीर्तनी है मलार गाँवते हैं, एक शुद्ध गंधार लगा के जिमें आप दस गा रहे हैं और शास्त्रीय संगीत विच कोमल गंधार ला के भी गाँवते हैं। मेरी बेनती है उस्ताद जी ने प्रिंसिपल साहब जी ने सारे ने जरूर सिखाया होगा मल्हार, जरा रल के चपताल अंदर गाइए। मन मेरे हर के चरण रवि जी सब अखो जी।

वाहगुरु जी, बड़े प्यारे प्यारे गुलदस्ते थे फुल, बहुत प्यारा जहा फुल गुरु गोबिंद सिंह महाराज दर दे प्यारे जी कीर्तनी है। भाई हरजोत सिंह जखमी जी, भाई भावनप्रीत सिंह जी, भाई जसप्रीत पाल सिंह जी, बड़ा आनंद बनाया जी। मैं हुण बड़े सत्कार नाल बेनती करदा भाई सिमरप्रीत सिंह जी हजूरी रागी श्री दरबार साहब अमृतसर साहब अजोके नवतन कीर्तनी है, जिन्हां नूं कदी असीं कनेडा देखते हैं, कदी अमेरिका चले जाते, हुण इंग्लैंड तो आए ने हफ्ता पहला, तो जदों फोन करिए तो अज मैं दिल्ली, अज मैं इत्थे आ, तो संगत इन्हां दा इन्ना प्यार करदी उचेचे तौर पर परिवार दे नाल संगती रूप में सारे जथे अपने अपने फैमिली मैंबरस नाल सारी संगत बैठी है बड़े प्यार नाल। ते इन्हां नूं वी जी आयां नूं शुकराना। मैं बहुत सत्कार नाल बेनती करदा सारी संगत नूं, आपां उन्हां नूं वी सुनना है जिहड़े अजोके नवतन कीर्तनी मेहनत करके जिन्हां ने बड़े वड्डे कीर्तनी बनना। इन्हां तों बाद भाई गुरसाहिब सिंह सूरमा जिहड़ा छोटा जिहा ही जदों साडे को अकैडमी च बाबा सुच्चा सिंह गुरमत संगीत अकैडमी च आया, तो उहदा पहला ही एक गल सी कि मैं सचखंड श्री हरिमंदर साहब दे दा कीर्तनिया बनना। मैं भाई मनिंदर सिंह जी ने कल ही सत्कार योग उन्होंने बेनती करना, क्योंकि ये भी सिलैक्शन कमेटी के मैंबर ने, रागी सिलैक्शन कमेटी ने, तो मैं क्या इन्हों इदा भी ना लगे कि कभी इस तरह होया नहीं, क्योंकि सिफारश है सारिया बाणिया कंठ ने, आसा दी वार कंठ है, सारा शब्द इन कंठ हो जाता है, तो सुरीलेपन की आप जानते हैं शिखर है इन्ना सुरीला कंठ। तो महाराज कृपा करे, मैं हमेशा जिक्र करदा इहदी वड्डी भैण साडी बेटी गुरसिमरन, ते इन्हां दे मम्मी डैडी जिहड़े नाल लैके चलदे ने, इह बच्चे नूं अज दुनिया च नाम हो गया, दुनिया इन्हां नूं प्यार करदी। बड़ी मैनूं खुशी होई जदों इन्हां नूं कीनिया तों फोन आया कि असीं तुहानूं बुलाउणा है, तुहाडा कीर्तन सुणिया। ते इह सचखंड श्री हर तख्त श्री हजूर साहब दीआं चार पंज साल दीआं हाजरियां, इत्थों दीआं बरकतां ते उह बरकतां ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज दीआं बड़ियां सारिआं नूं मिलदीआं। इन्हां ने भी कीर्तन सरवण करवाउणा, होर बड़े कीर्तनी जिहड़े आए दे ने, पंज उन्होंने दस दस मिनट लाने सारिआं ने। सो कल भी इदां दीवान सज्जनगे जिन्ना चिर साज सुर हुंदे ने, कल भी दीवान सज्जनगे, कल पूरे 9 बजे आपां दीवाना दी शुरुआत कर देनी है। सब तो पहलां कई पल कल भाई हरजोत सिंह जखमी जी वह हाजरी भरनगे, उन्हां तों बाद भाई सिमरप्रीत सिंह जी, भाई मनिंदर सिंह जी, भाई ईश्वर सिंह जी जिन्हां दे सवेरे आसा दी वार है, इस करके वह विश्राम करके क्योंकि हुणे औरंगाबाद तो आए ने, वो कल दे दीवाना च हाजरी भरनगे। बीबा हरगुणप्रीत कौर जी होर प्यारे प्यारे कीर्तनी ने जिन्हां ने तुहानूं दर्शन करने साडे, इन्हां दी अपनी अकैडमी बच्चों की, बाबा सुच्चा सिंह गुरमत संगीत अकैडमी के बच्चे बच्चियां सारिया ने मिलजुल के, क्योंकि इन्हों का मन हुंदा जिहड़े प्यारे कीर्तने आए उन्होंने वध तो वध असीं सुनिया जाए, पर इन्हां सारिया के मन इकट्ठ रूप के आप जी शब्द सरवण करवाउणगे। आओ साज शुरू हो गए ने, उस्ताद अनिकवार सिंह जी नाल ते भाई अंतरप्रीत सिंह जी नाल गायन करनगे, भाई बिक्रमजीत सिंह जी रबाबी नाल रबाब की सेवा कर रहे हैं, भाई जशनदीप सिंह रबाबी वो नाल रबाब जा रहे हैं, बिटिया नाल बैठी है, तो भाई गुरसागर सिंह जी ना ही बड़ा प्यारा तंती साज सारे ने बजा रहे हैं। इन्हों तो बाद भाई कमलजीत सिंह उन्होंने बेनती है, होर भी जोड़े साज बजाते हैं सारे अपने अपने हाजरियाँ, जो अमरजीत सिंह जी तुम रबाब बजाओ।

0: पूरा सेट कराओ पूरा।
1: आओ बड़े प्यार नाल बीबा गुरप्रीत कौर जी यूके वाले है तो लुधियाने वाले हूँ यूके वाले हो गए। आओ जी।

सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मंड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमृत सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुदे आखे लख करोड़ सच्चे सब तान।

बंदन बन पुहाए सोए पैक नचे सब कोए नच नच हसाए चले से रोए उडना जाही सिदना होए नचन कुदन मन